आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: बंद करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां, चला जाऊं कैसे, चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी, ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं, ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक, इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ ज्यादा आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

देखो ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: कम्मा है, जग चुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है।
1: इधर तू आ आ,
0: जा जा घर तू जा जा,
1: अरे आ आ इधर तू आ आ,
0: जा जा।

किधर है रे तू?

अजी घास ले डाल को फूक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लो क्या, अपने हाथ में खाना।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू रेडियो हॉटस्टार एंड रेडियो गाना के दीवाने दीवानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राधे राधे। दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का वर्ड मस्ती का प्रोग्राम। और आज के जो वर्ड है, जो शब्द है, वो है इन कागज, खत, उसके बाद किताब, लड़का, लड़की और कॉलेज, नाम, आईना, जिंदगी और नजर। इन शब्दों से गाने भेजने हैं आपको और एक शब्द पर तीन तीन गाने प्ले होंगे, इन्हें कम से कम, अधिक से अधिक इन्हें पांच प्ले हो सकते हैं, लेकिन वो चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि मतलब इन समय नहीं मिल पाता है ना, इसलिए तो इन्हें कम से कम हर शब्द से तीन तीन गाने प्ले होंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखें, अगर इन किसी गाने की फरमाइश आ चुकी है, उस गाने की फरमाइश वो ना करें, क्योंकि अगर वो करते भी हैं तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए आप दूसरा गाना ढूंढते रहिए, वहाँ पे लिस्ट में आपको दिखाई देती है कि किस किस गाने की फरमाइश आ चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे मिलेगा आपको। और हाँ, खास बात बता दूं कि एक बहुत ही बेस्ट आरजे आरजे सोनी जी का जन्मदिन है, तो आरजे सोनी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल, आपकी वो तमाम ख्वाहिशें और वो यानी कि तमाम यानी कि मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो, और आप दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करें, और इतनी अपनी अपनी प्यारी खूबसूरती आवाज से, जो आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, उस खूबसूरत आवाज से अभी अपने श्रोताओं के दिल में जगह बनाए रखें, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक आपका फैन हूँ। एंड आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए, आज के थीम पर ही है, तो सबसे पहले मेरे पसंद का गाना है, और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार एंड रेडियो गाना जो बना दे दीवाना बजाते रहिए दिल से। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफुल भाई सरफराज जी, वालेकुम सलाम भाईजान, बहुत बहुत वेलकम है। नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम आपका भी। और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है अरुण मंडल जी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है सर्वजीत सेठी जी। और हुकुमचंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, आपका भी वेलकम है। और कुंताबिनी जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम है। और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों कह रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है जितेंद्र सिंह जी। और बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है नमस्कार, वेलकम है आपका भी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है अभिषेक तिवारी जी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं?
1: हाँ तो अमन सर जी हम नजर पर एक,
0: अच्छा तो आपको वहाँ भेजना होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से गाना भेजना होगा। और क्या कहते हैं?
1: हेलो अमन सर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हम भी जुड़ चुके हैं वर्ल्ड मस्ती में सॉन्ग।
0: ओके जी, तो बहुत बहुत आपका वेलकम है दिगंबर सिंह जी। और हाँ सभी से मैं बताना चाहूंगा कि गाने की रिक्वेस्ट आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से ही करनी होगी। नो वॉइस मैसेज, मतलब यानी मैसेज के जरिए नहीं, आप सॉन्ग रिक्वेस्ट में आप अपने यानी बोल कर भेजिए चाहे लिख कर भेजिए जैसे भेजिए, लेकिन सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा। ओके, और आज के शब्द एक बार मैं फिर से बताता हूँ, वो है यानी कागज खत और उसके बाद किताब है लड़का लड़की और कॉलेज नाम आईना जिंदगी नजर। हर शब्द पे तीन तीन गाने प्ले होंगे। और सबसे पहला जो मैं शब्द प्ले करने जा रहा हूँ, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल आता है जिसे भेजा हुआ है जाकिर खान जी के द्वारा। लिखते हैं हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। अमन जी सबसे पहले आपको और हॉट स्टार के सभी दोस्तों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो जाकिर खान जी सुनवा रहा हूँ, सबसे पहली पसंद आपकी, सच में गाना चुन के लाया।

बिल्कुल हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। और यहाँ सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सुनील कुमार जी। और प्रिंस पासवान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है प्रिंस पासवान जी। और ना ही जीतेंगे सुपर पसंद औसम फरमाइश जाकिर जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। एंड यहाँ पे जुड़ चुके हैं इनाम है उनका यानी कमल शंकर पांडे जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, नमस्कार। सभी दोस्तों कह रहे हैं सरोजी जी जीतेंगी, दोनों की शानदार लगे हैं, अमन सा जी मजा आ गया है। और इसी बात पर अगली पसंद मैं सुनवा रहा हूँ, जिनका जिसे भेजा हुआ है हमारे सैयद यूनु जी ने। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। हाँ हाँ

0: बिल्कुल, आजकल की लड़कियां तो भाई कमाल करती हैं, किसी को दिल में रखती हैं, किसी पे मरती हैं। और फिरदेव जी आ चुके हैं मेरे पास, बहुत सारे मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि वाह मनसा जी मैं भी जुड़ गया हूँ महाराष्ट्र से, वेलकम है आपका भी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं,
1: थैंक यू सो मच सर गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। आज की थीम पर प्ले होने वाले सभी सॉन्ग शानदार रहेंगे।
0: बिल्कुल
1: जाकिर खान, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, सभी गाने एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: आजकल की लड़कियां कमाल करती है, बहुत बढ़िया सॉन्ग चल रहा है सर जी, और मेरा गीत प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सही दिनों सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी,
0: वेलकम जी आपका भी। और नाहिद जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब फरमाइश सैयद दोनों जी आपकी लगी है। और अकुंता जी लिखते हैं कि दोनों फरमाइश बहुत ही ब्यूटीफुल लगी हैं। और साथ ही साथ नाजिम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है नाजिम जी। और प्रिंस पासवान जी लिखते हैं मस्त गाना है, आजकल की लड़कियां कमाल करते हैं। इसी बात पे अगला जो यानी कि वो लड़की पर गाना है जिसे भेजा हुआ है हमारे अकबर खान जी ने, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सच में ऐसा लगा, ऐसा लगा, कैसा लगा सुनिए।

0: नशा। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आ चुके हैं। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू अकबर खान जी, थैंक यू सो मच। नाहिद जी लिखते हैं कि सो स्वीट ऑसम फरमाइश है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच इस गाने के लिए अकबर खान जी को। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते जी, हम भी जुड़े हुए हैं, सर्वेश भगत बोल रहे हैं, हमारा भी आज लगा दीजिएगा, हम भी गाना भेजे हुए हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी आपका भी, और आप ही का आने वाला है, क्योंकि अब मैं यानी कि कॉलेज स्टार्ट करने वाला हूँ कॉलेज शब्द, और जितने दोस्तों ने अब अगर यानी कि इस शब्द पर गाना नहीं भेजा होगा यानी कि कॉलेज शब्द पे, तो जल्द से जल्द गाना भेज देंगे अपना। सर्वजीत जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार लग रहा है, थैंक यू सो मच आपका भी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं?
2: अमन सर जी, हमने सॉन्ग रिक्वेस्ट में सॉन्ग डाला है। अच्छा। आया है कि नहीं आया है? सब तरह से कोशिश कर ली,
0: मैं देख लेता हूँ,
2: जरा आ गया हो तो।
0: नहीं आया है आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट, क्या पता आप कहाँ से करते हैं। देखिए, जो मोर है ना, सबसे रेडियो हॉटस्टार का एप्लीकेशन में सबसे नीचे एक दाहिने साइड में एक इन बटन हैगा, इन मैसेज के बगल में होगा मोर लिखा होगा, मोर पर क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आता है इन सॉन्ग रिक्वेस्ट का। सॉन्ग रिक्वेस्ट में दो फील्ड तो जरूर भरना है, सबसे पहले आपका नाम वाला उसको भरना जरूरी है, अनिवार्य है। उसके नीचे जो गाने का बोल है वो भरना अनिवार्य है, बाकी कुछ भरिए ना भरिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन दो फील्ड भरना एकदम अनिवार्य है। जब तक आप दोनों को भरेंगे नहीं तब तक आपका गाना मेरे पास आएगा नहीं, तो इसका जरूर ख्याल रखें। और सुनील कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अकबर खान जी को। और अकबर खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। इसी बात पर हम सर्वेश भगत जी का ही गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और यानी कि कॉलेज पे गाना स्टार्ट हो रहा है, तो कॉलेज पे जो दोस्त गाने नहीं भेजे हैं तो जरूर भेज सकते हैं।
1: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है, इसमें ये दिल है आशिकाना। अच्छा। गाने का बोल है ए मेरी नटखटी कॉलेज की लड़की हो, यही गाना है। और देश दार जो सबको दीवाना बनाते, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत नाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, प्रकाश कुमार, अनंत कुमार, ईश्वर कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, और अनिल मेहता जी, और नंदलाल यादव जी, आत्माराम पाटिल जी, और सभी आरजे, और सभी भाई, और सभी बहन, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, और सभी लेसनर, इसमें सांसद को सुना दीजिएगा, जयराम जी के अमन सर।
0: शुरुआत दिया

और मैं बता दूं कि अभी बाकी है वो यानी कागज, खत, किताब, लड़का, क्योंकि अभी यानी कि लड़की पहुंच चुका है तो यानी कि लड़का पर गाना जरूर भेजेंगे, और कॉलेज नाम आईना जिंदगी नजर, अभी यानी कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज पे गाने भेज सकते हैं।

0: देखा करो।
1: वेलकम बैक, बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। पहला तो यही शामिल करते हैं
2: आरजे अमन सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर, आप हमारा फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, धन्यवाद।
1: जी जी, धन्यवाद आपका भी। और कुंता जी लिखते हैं कि आदरणीय सर्वेश भगत जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई। ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और उनके बाद है ये क्या कहते हैं, अकबर खान जी लिखते हैं कि अमन सर जी, आज पहली बार मेरी फरमाइश इन सीजन नंबर पर बजी है और साल बाद हो गया आपसे जुड़े हुए, वह क्या बात है, मजा आ गया सुनकर। अच्छा ये बात है। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं वाह वंडरफुल चॉइस है सर्वेश भगत जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अगली जो मैं फरमाइश प्ले करने वाला हूँ वो नीरज गुप्ता जी की, तो नीरज गुप्ता जी आपका गाना प्ले कर दिया है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, एंजॉय कीजिए।

और वेलकम बैक। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जितने दोस्तों के पास अगर यानी कि आईफोन है तो आईफोन को हमारे इन वेबसाइट से सुन सकते हैं, radiohotstar.com से। बिल्कुल आपको वो सुनाई देगी अच्छे से, बिल्कुल ऐप के जैसे सुनाई देगी। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश चल रही है अमन सर जी, दिल से धन्यवाद देते हैं दोस्त को। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि कॉलेज वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं कॉलेज की लड़की है। और दिगंबर जी की फरमाइश आ चुकी है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा। ओहो, इनके बाद नंदलाल जी गाए हुए, कोई बात नहीं। तो फिलहाल दिगंबर जी का गाना प्ले कर रहा हूँ। नंदलाल जी, आप दूसरा वर्ष से गाना भेजिएगा, फिलहाल ये गाना इनका प्ले।

और यहाँ पे कपूर चंद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ा हूँ जी, वेलकम है। नाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच दिगंबर सिंह जी, इतना प्यारा गाना सुनवाया, आई लव दिस सॉन्ग। ओके जी, अगला गाना मैं सुनवाने वाला

ओके तो अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो अपने दोस्त सरफराज जी का गाना प्ले करने वाला हूँ, तू लड़का लंदन का। ओके जी, तो अब गाने जो भी प्ले होंगे वो यानी कि लड़का सब तो होंगे प्ले, तो जल्दी से गाने भेजिए, अगर नहीं भेजोगे तो।

0: मुझे समझ न प्यारे, मुझे समझ न प्यारे, बोले बोले मैं हो सकती नानी। जा दिल भर जानी, जा दिल भर जानी, अरे जा जा जा जा जानी।
1: नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है अमन सर जी। और अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी का, उन्होंने भेजा है लड़के ने लड़की को छेड़ा। बिल्कुल भाई छेड़ा होगा ना, मुझे पता है। एंजॉय कीजिए गाना प्ले कर।

अरे हो गया ना तूफान। वेलकम बैक, फीडबैक भी आ गया बहुत सारा। और यहाँ पे यानी कि प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि कार्यक्रम सुपर चल रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, अच्छा थैंक यू सो मच। और संगीता अम्बुलकर जी का भी बहुत बहुत वेलकम है। ज्योति खंडोली जी का वेलकम है, लिखते हैं नमस्ते और सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, अच्छा। सरफराज जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और कुंता जी लिखते हैं कि वाह वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद चल रहा है। और नाम है सुनील कुमार जी लिखते हैं कि लड़के ने लड़की को छोड़ा, बहुत ही अनसुना गाना सुनने को मिला है। अगली पसंद इसी बात पर मैं सुनाता हूँ, देवपाल इन मोरिया जी का आंख मारे ओ लड़का आंख मारे, सुनवा दिया।

वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं बहुत सारे, तो शामिल कर लेता हूँ। और नहीं जी लीजिए, सुपर सुपर सुपर लाजवाब फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच। प्रशांत अम्बुलका जी लेते हैं कि गाना तो बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है जी। तो अब मैं बता दूं कि जो मेरे पास यानी कि शब्द बचे हुए हैं वो शब्द है यानी कि कागज और खत और किताब, और उसके बाद है नाम, आईना, जिंदगी और नजर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फिर नजर से। नजर जीता जीता जाए उधर तू ही उधर तू ही नजर आए। मैं सुनवा रहा हूँ ये गाना MD नाजिम जी के पसंद का। एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक, फीडबैक आ चुके हैं आप। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश चल रही है इमरान नाजिम जी की, और नाहिद जी लिखते हैं कि सो ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और यहाँ पे सुनील कुमार जी लिखते हैं कि इमरान नाजिम जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, और नाजिम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। अगली पसंद जो मैं सुनवा रहा हूँ वो है अशोक देशमुख जी का, कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। जी कुछ मत देखिए, देखते रहिए, सुनते रहिए।

मतलब यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे कमल शंकर पांडे जी ने भी भेज दिया है और अब मुन्ना जी ने भी अब भेज दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक गाना मैं प्ले करूंगा कमल जी का, उनके पहले आया हुआ है। अब मेरे पास जो गाने आने वाले हैं वो फिर वो यानी कि कागज से और खत से, किताब से और नाम आईना जिंदगी, इन पर भेजना है।

0: रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजिए प्लीज। नाजिम दिलीप सिंह सुपर हिट पसंद चल रही है और ये कमर शंकर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: नजर जिधर जिधर जाए, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही शानदार गीत, बहुत हमें बहुत अच्छा लगा। मैं कमल शंकर पांडे, ग्राम मोहल्या कला चौराहा पोस्ट हुसैनपुर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
0: और कमल शंकर पांडे जी, आपका गाना मैंने प्ले कर दिया है, नजरों से कह दो कि प्यार करने का मतलब मौसम आ गया है ना।

वेलकम बैक फीडबैक भी आ चुका है और प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे से यानी कि कभी कभी का गाना मुझे बहुत शानदार लगा है। अशोक देशमुख जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी फरमाइश के गीत को प्ले करने के लिए। और सुनील कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है नजरों से कह दो तुम। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपरहिट फरमाइश है। और राजीव जी लिखते हैं कि ब्लॉक बस्टर सुपरहिट पसंद के लिए धन्यवाद देता हूँ। ओके जी अगली पसंद मैं सुनवा रहा हूँ जिसे लेकर आए हुए हैं कौन साहब है जरा सा मैं देख लेता हूँ। हुकुम चंद जांगिर जी हैं, ये लिखते हैं कि आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है और आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। बिल्कुल, तो हुकुम चंद जी गाना प्ले कर दिया आपका आईना बता कैसे।

0: चुराना है आज फिर अकेले में उनसे मिले जाना है और फीडबैक भी शामिल करते हैं।
1: आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। बहुत ही लाजवाब सुनकर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं कौन सुनकर पांडे ग्राम मोहल्ला कला चौराहा जिला सीतापुर।
0: धन्यवाद आपका भी। और ना ही चीज लिखने की बहुत ही प्यारी पसंद है हुकुम चंद जी की आपकी। और हुकुम चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमनसा जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ये क्या कहते हैं
2: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और मेरी पोती का आज जन्मदिन है तो इस अवसर पे आप अमन भैया आप और वंशिका जी परमार जी एवं सभी आरजे और सभी श्रोतागणों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आप जरूर से जरूर आएंगे। धन्यवाद
0: जी। और आपकी पोती जी को जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वो जी हजारों साल आपका भी नाम रोशन करें। प्रमोद कुमार लिखते हैं वह क्या बात है, मजा आ गया है, तो सभी पसंद औसम चल रहे हैं। कुंता जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है। अगली पसंद मैं सुनवाता हूँ नंदलाल यादव जी गाजीपुर यूपी से भेजे हुए। आईना आईना तू बता दे जरा क्या बता दे, सुनते हैं।

वेलकम बैक। और नंदलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और कमल शंकर जी लिखते हैं कि अमन सर जी हमारे तरफ से यानी कि सुनील भाई जी के इन पोती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे रेडियो हॉट स्टेशन में बहुत अच्छा फीचर है जिसका नाम है शट आउट, वहां से आप जन्मदिन की बधाइयां दे सकते हैं। अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ खुशबू कुमारी जी का, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं, क्यों है ना ये आईने जो। इंजॉय कीजिए खुशबू जी।

अरे बहुत प्यारी होना तो पसंद तो करना ही पड़ेगा ना प्रमोद जी, लिखते हैं लाजवाब रिक्वेस्ट है। और संगीता अम्बुलकर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पहली बार सुना मैंने हमारे नंदलाल यादव जी का गाना, अच्छा लगा उनका गाना। अगली पसंद मैं सुनवाता हूँ विपिन श्रीवास्तव जी का, गोरे कागज पे लिखवा ले, नीचे दस्तखत भी करवा ले, अंगूठा लगवा ले कि प्यार किया। अब हम लोग चल रहे हैं सीधे यानी कि कागज पे, बाकी है

वेलकम बैक ऑन नाहिद जी, लिखते हैं वेरी नाइस फरमाइश है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं सुपर फरमाइश है। और गजानन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी गजानन जी। सभी साथियों को नमस्कार कह रहे हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत फरमाइश चल रही है, दिल से धन्यवाद देते हैं बिपिन जी को। और इसी बात पर यानी कि कपूर चंद जी का गाना फिल्म सुहाग का

और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुनील कुमार जी बांका बिहार वाले का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि वो भेजे हुए सबसे पहले कागज कलम दबा तला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए कागज कलम दबा तला।

और अभी जो बाकी है शब्द वो है इन खत और किताब नाम जिंदगी, यानी चार शब्दों पर ही अब गाने प्ले होने वाले हैं। बाकी सब का कंप्लीट हो चुका है, यानी सभी इन शब्द से तीन तीन गाने हो चुके हैं।

कम बैक। और यहाँ पे मोहन वाली लिखते हैं कि हमने नहीं, आपका रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया गया क्योंकि थीम पर नहीं भेजा है आपने। कुंता जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनील कुमार जी का, थैंक यू सो मच। और अगला गाना मैं इसी बात पर अब यानी कि खत पे चलता हूँ, और खत पे पहला गाना भेजने वाली है नाई दंसाई जी, मैं इन्हीं का प्ले करता हूँ। खत मैंने यानी कि प्यार के कागज पे दिल के कलम से खत, ऐसे कुछ गाना है शायद, सुनवाता हूँ।

और यानी कि किताब पे गाने मुझे यानी कि कम आए हुए हैं, तो आप यानी किताब पे गाने भेज सकते हैं। और साथ ही साथ यानी कि नाम पे भी एक गाना और चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दो मेरे लिए आए हुए हैं ऑलरेडी। और जिंदगी पर भी अगर देख सकते हैं, अगर अच्छे गाने भेज सकते हैं तो भेजिए, जिंदगी पर प्ले करने वाला हूँ।

खत महबूब के नाम लिखा और ना ही जिली लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं नाई जी को और कुंता जी लिखते हैं नाई जी की इसकी फरमाइश सुपर सुपर सुपर हिट लगी है। इसी बात का अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अरुण मंडल जी का मैं प्ले करता हूँ। अरुण मंडल जी के साथ साथ वैसे तो इस गाने को अब्दुल जब्बार जी ने भी भेजा है लेकिन अरुण मंडल जी ने पहले भेजा है इसलिए अरुण मंडल जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। खत लिख दे सवरिया के नाम है बाबू।

0: अच्छा जी,
1: देख ले मेरी हाय ये बेचैनी और लिख दे दो बातें।
0: ओके, मैं लिख देता हूँ।

0: नाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। सुपर सॉन्ग अमन जी, लाजवाब फरमाइश।
1: ओके जी,
0: पाली से अकबर खान।
1: धन्यवाद अकबर खान जी। और अकुंता जी लिखते गोल्ड इज गोल्ड, वेरी नाइस फरमाइश है। अरुण मंडल जी आपकी थैंक यू सो मच। प्रमोद कुमार लिखते हैं लाजवाब फरमाइश चल रही है। और यहाँ पे दिलवर कुमार जी जुड़ चुके हैं, तो आपका भी वेलकम है। और इसी बात पर अगला जो यानी कि पसंद है वो मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे नाम है उनका सुनीता गोगी। तो सुनीता गोगी आपका मैंने सेशन को प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

और मुझे यानी के नाम पे एक गाना चाहिए जो, और यानी के किताब पर भी एक गाना चाहिए शायद, नहीं किताब पर शायद दो गाने चाहिए, दो हाँ एक आया हुआ है और दो और चाहिए। और यानी कि जिंदगी पर तो करीब करीब बहुत सारे गाने आए हुए हैं, देखता हूँ इसमें से कौन कौन सा मैं प्ले कर सकता हूँ।

मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आता है, लेकिन ज्योति जी लिखते हैं वाओ, यानी कि सुनीता गोप जी आपकी पसंद बहुत सुपरहिट लाजवाब लगी है। और अगला जो गाना मैं प्ले करना हूँ वो है अब इन जिंदगी पर, अभिषेक तिवारी जी का है, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

और यहाँ पे सुनीता गोपी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। नाही जी लिखते हैं वाओ सुपर वंडरफुल फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी फरमाइश है, ब्यूटीफुल फरमाइश है। और ज्योति जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर लाजवाब पसंद है। इसी बात का अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है रितु जी का जिंदगी बन गए हो तुम। आहा क्या गाना है, सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। और आज तो सभी दोस्तों के गाने एक से बढ़कर एक, अभी यानी कि चल रहा है गाना, आखिरी गाना चलने वाला है, वो जिंदगी पर चलने वाला है। लेकिन मैं बता दूं कि यानी कि किताब पे गाना अभी बाकी है और साथ ही साथ नाम पे भी बाकी है, और यही दो शब्द हैं शायद जो अभी तक इन बाकी हैं, तो बहुत जल्दी इन पर भी गाने प्ले होने वाले हैं। मेरे पास कुछ फीडबैक आ चुके हैं, शामिल करता हूं मैं। सबसे पहले बिट्टू कुमार जी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन गाना है, और नाही जी लिखते हैं सुपर हिट फरमाइश अमेजिंग पसंद, थैंक यू सो मच रितु जी। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा शर्मा जी आपका भी। और हमारी नंदनी माँ जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, और लिखते हैं कि 11 बजे से सुन रही हूँ, अच्छा थैंक यू सो मच, अभी मैसेज कर रही हैं, कोई बात नहीं है। संगीता अम्बरकर जी लिखते हैं कि हर टचिंग सॉन्ग है, जिंदगी बन गए हो तुम। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, धन्यवाद देते हैं। ओके जी, अगली जो पसंद मैं सुनवाने वाला हूँ वो काजल झटका जी का आया हुआ है मेरे पास, मेरी जिंदगी के मालिक दिल पे हाथ रख दो, कि तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए काजल झटका जी।

वेलकम बैक। और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और मोहन वाले लिखते हैं कि रिक्वेस्ट एक आपका वो जो था अब इन जिंदगी पर खत्म हो चुका है, इसलिए आपका गाना भी कैंसिल हो चुका है और बहुत से दोस्तों का गाना कैंसिल हुआ है। और मैं बता दूं अब जो गाना प्ले होगा वो दो ही शब्द है, क्योंकि ये यानी कि जिंदगी पर भी खत्म हो गया गाना, अब बचा है दो शब्द बचा है, एक है नाम और एक है यानी किताब। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ यानी कि नाम वाला गाना, फिर यानी किताब वाला गाना मैं प्ले करूंगा। ओके, और आत्मराम जी लिखेंगे आर्यमन जी हमारी प्यारी बहना यानी काजल झका जी के पसंद बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच उनको। और बिटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है जी, बिल्कुल। और नंदनी मां लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है। और अजय भगत जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। ओके, तो फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ बिट्टू कुमार जी का, नाम क्या है प्यार कमारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा।

0: दिगंबर है, वेलकम बैक फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं बहुत सारे। और यहाँ पे सबसे पहले तो दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी, अब ये बताइए कौन से गाने का ऑप्शन लास्ट में रह गया है।
0: जी तो मैं आपको बता दूं कि आपका गाना ऑलरेडी यानी कि प्ले हो चुका है, इसलिए अब आप दोबारा गाना नहीं भेज सकते हैं। आपने जो गाना भेजा था यानी कि कल कॉलेज बंद हो जाएगा, वो गाना प्ले ऑलरेडी हो चुका है। ओके, और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया गाना लगा है यानी काजल झक्का जी का। हाँ जी, और नहीं जी लिखते हैं कि सुपरहिट लाजवाब पसंद है। बिट्टू जी आपकी थैंक यू सो मच। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और अकुंता बिनी जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश है बिट्टू कुमार जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और आत्मराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी बिट्टू जी की पसंद, वाह वाह वाह क्या गाना है, शानदार गाना है, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और अशोक यानी कि डले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम है अशोक अशोक यानी कि डले जी। और मोहन नवाज जी लिखते हैं कि हाँ आता है, लेकिन जब देखिए एक बार गाना भेज देते हैं ना, उसके लिए आपको कम से कम 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। बिना 10 मिनट से पहले आप गाना दोबारा नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, बार बार मुझे भेजते थे ना, तो मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि 10 मिनट के बाद ही आप भेज सकते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा है मुझे। अगला जो यानी कि पसंद है वो मैं सुनवाने जा रहा हूँ सीधे ज्योति खट्टे जी के पसंद है कि तेरा नाम लिया तुझे याद किया। इंजॉय कीजिए ज्योति खटवाड़े जी।

0: हेलो
1: हाय राम,
0: वेलकम बैक। और मेरे पास आ चुका है नाहिद जी, लिखते हैं कि ज्योति जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। और नाजिन जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, धन्यवाद देते हैं। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है। और ज्योति जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी मेरा गाना सुनाने के लिए। और कुंता जी लिखते हैं ज्योति जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई जी, बिल्कुल। और अगला जो गाना है ये नीचे प्रमोद कुमार जी की पसंद, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, ये गाना सुनना चाहते हैं, मैं सुनाऊंगा इनको।
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

ज्योति दिल सिंह भाई साहब की पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी है, और नाजिम दिल सिंह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्रमोद कुमार लिखेंगे थैंक यू अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया। और इसी बात पर आप यानी कि किताब की ओर बढ़ते हैं, और किताब पर दो गाने आ चुके हैं, एक गाने की जरूरत और है, तो यहाँ पे बन के किताब तेरी आरजे वंशिका जी सुनना चाहती है, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए आरजे वंशिका जी।

और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं, तो यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अशोक यानी कि ढले जी लिखते हैं कि आपका गीत नहीं थी, आपका गीत देखिए आज के वो थीम पर नहीं है आपका गीत, इसलिए आपका गीत प्ले नहीं होगा, और वो भी आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजा भी नहीं है, मैसेज किया हुआ है। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला गाना यानी बिंदिया जी का चेहरा तेरा किताबी किताबी, जी बिल्कुल किताबी किताबी है, सुनिए इंजॉय।

वेलकम बैक। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है आत्माराम जी। लिखते हैं कि आत्माराम पाटिल जी के अर्जमन जी ज्योति खड़वर जी की सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा है, तुझे याद किया वाला। और अगला जो गाना जो मैं यानी कि प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि प्रिंस पासवान जी का मैं गाना प्ले करने वाला हूँ। प्रिंस पासवान जी वो है गाना यानी कि तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी ना मिलेंगे, बिल्कुल ना मिलेंगे।

और अब तो सभी यानी वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास अभी यानी समय है तो एक दो गाने में और प्ले करके जाता हूँ। तो यानी पहले यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ ना मैं उनका यानी कि शिवम जी। तो भाई शिवम जी गाना प्ले कर दिया आपका, दिल तेरे नाम कर दिया।

ओके, तो इसी गाने के साथ अपने डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर आज ही शाम 7 बजे तक। और आज रहेगा स्टार गीत मस्ती, उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों का शो, जिसमें आप अपने गाने को लिखकर भेजेंगे मेरे पास। उस गाने के जवाब के साथ साथ अपने गाने भी, सिर्फ आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप नंबर पे 9135841232।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए?
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

खोल। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर एक बार फिर से आज संडे स्पेशल में। आज फोर्थ संडे है और फोर्थ संडे में होता है स्टार गीत मस्ती, तो गीतों के साथ हम मस्ती करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत ही बेस्ट आरजे सोनी जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोनी जी, आप जियो हजारों साल और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सबसे पहले आपको मेरी पसंद से एक गाने आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां।

और बता दूं कि आज हमारे यानी मिनेश पटेल जी का भी बर्थडे है, उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और सुनील कुमार जी की जो यानी पोती है आज, मतलब उनका भी जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले सरफराज पटेल जी, वालेकुम सलाम, ये साउथ अफ्रीका से बहुत बहुत वेलकम है इनका। और एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है एमडी फैज आलम जी। और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी नाहिद अंसारी जी। ज्योति खंडवड़े जी वेलकम है आपका भी। और अशोक देशमुख जी वेलकम है आपका भी। और बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है बिट्टू कुमार जी। और राजेश कुमार जी, आप सभी का वेलकम।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और अब बता दूं कि आज गीत मस्ती के दिन आपको आज भी इस्तेमाल करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको मैसेजेस करने होंगे, जो नंबर है 9135841232 यानी 91 35 84 12 32। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का गीत मस्ती, और सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। और इसी गाने से स्टार्ट हो रहा है आज का गीत मस्ती।

0: और ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: हमको कहते हैं दीवाना, अब दीवाने भी तेरी मोहब्बत में पागल रहते हैं हम, यूं रहते हैं हम तेरे प्यार में।
3: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और दोस्तों बता दूं कि वैसे तो मेरे पास जवाब आए हैं बहुत, लेकिन दो जवाब सही हैं, बाकी सारे जवाब गलत हैं। जो दो जवाब सही हैं वो जवाब है सबसे पहले ज्योति खटवड़े जी का और दूसरा जाकिर खान जी का। तो ज्योति जी आपका मैं गाना प्ले करने वाला हूँ और बाकी दोस्तों का तो भाई गलत है तो मैं कुछ उनका नाम भी नहीं ले पाऊंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग यानी पार्टिसिपेट करते हो, हाँ जो दोस्त यानी फीडबैक देंगे मैं उनके फीडबैक भी शामिल करूंगा। और जवाब है इसका जरा देख लो, हम तेरी मोहब्बत में क्यों पागल रहते हैं, ये उस उल्टे पुल्टे गाने का जवाब था। और इनका जो गाना है वो मैं प्ले करूंगा, लेकिन उसके बाद से मैं फीडबैक भी शामिल करूंगा। तो ज्योति खटवड़े जी एंजॉय कीजिए, आपके गाने को मैंने प्ले कर दिया।

0: और ये रहा उल्टे पुल्टे गाने का बोल।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: याद आते हैं वो हमेशा अनजानी राहों में जो मिलते थे, दुनिया में अक्सर अनजानी मिलकर फिर खो जाते।
1: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और दोस्त, अगर आपका जवाब पहले आता भी है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आप अपने गाने के साथ, अपने जवाब के साथ गाने नहीं लिख के भेज रहे हैं। तो अपने जवाब के साथ गाने के बोल जरूर लिख के भेजें प्लीज।

ओके जी, मेरे पास सबसे पहला आरजे सोनी जी का मैसेज आया हुआ है और ये इनका जवाब बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ जवाब में मेरे पास जो आया हुआ है सही सही मैं बता देना चाहता हूँ, ज्योति खटवाड़ी जी का सही है और राजेश कुमार जी का सही है और सुनीता गोप जी का सही है, जाकिर खान जी का सही है और सरफराज जी का सही है और साथ ही साथ एक साहब क्या नाम है इनका, नहीं जुड़ चुके हैं यहाँ पे संध्या पटेल जी, तो बहुत बहुत वेलकम है संध्या पटेल जी भोपाल से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और इस्माइल खान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। तो इतने दोस्तों का सही जवाब है जितना दोस्तों का मैंने नाम लिया, बाकी दोस्तों का जवाब गलत गलत गलत है। तो इनके गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए आरजे सोनी जी। और हाँ, गाना तो प्ले करूंगा लेकिन फीडबैक भी था ना, मैं फीडबैक शामिल करना भूल गया, कोई बात नहीं, इस गाने के बाद मैं फीडबैक शामिल करता हूँ, सुनवाते हैं इस गाने को।

0: ये रहा उल्टा पुल्टा सॉन्ग के बोल,
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: भेलपूरी मैं खा रहा था, रस्ते से था जा रहा, मिर्ची लगी तुझको अगर, मैं तो क्या करूं, लड़की घुमा रहा था। दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

0: ओके जी, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, लेकिन पहले फिलहाल मैं फीडबैक यहाँ शामिल करूँगा फीडबैक, उसके बाद से मैं जब आप बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मीना जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम है मीना जी। और ये कालीचरण मास्टर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: नमस्कार अमन भाई।
0: नमस्कार,
1: हमारे तरफ से सोनी मैडम को भी नमस्कार
0: जी,
1: हैप्पी बर्थडे,
0: थैंक यू।
1: और सभी दोस्तों को नमस्कार।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भाई कालीचरण जी मास्टर जी। और नाहिद जी लिखते हैं कि ज्योति जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, थैंक यू सो मच। और ज्योति जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी, आपने मेरा सॉन्ग को प्ले कर दिया है। और नंदलाल जी लिखते हैं गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ, नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से। नाजिम जो जुड़ चुके हैं वेलकम है आपका भी। और तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे पास जो जवाब आया हुआ है वो रंजन यादव जी का आया हुआ है, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, बिल्कुल सही जवाब है। और इनके बाद यानी कि जाकिर खान जी हैं, नाहिद जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, ज्योति खटवर जी हैं, अकबर खान जी हैं, और राजेश गौतम जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, मुन्ना जी, मतलब बहुत से दोस्तों दोस्तों के मैसेज हैं इसमें, लेकिन मैं सीधे इनका गाना प्ले कर रहा हूँ, रंजन यादव जी आपका। और जिनका तीन बार होगा मैं उन्हें कॉल लगाऊंगा, बिल्कुल उनसे बातें करूंगा ढेर सारी।
2: अच्छा
0: सच में

0: और ये रहा अगला सवाल, उल्टा पुल्टा गाना।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: कैसे चाहूँ तुम्हें बोलो, तुम हो दिल में आँखों में, वैसे चाहूँ जैसे तुम कहो, करूँ सजदा या पूजा करूँ।
3: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: और मेरे पास दो जवाब बिल्कुल सही आए हुए हैं, बाकी जितने आए हैं वो गलत गलत गलत गलत गलत आए हैं। वैसे यहाँ पे लिखते हैं कुंता बेनर्जी के गुड इवनिंग, अर्जमन जी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आँखों में तुम
0: जवाब बोल कर नहीं भेजना है, लिख कर भेजना है, वो भी इन व्हाट्सएप पे भेजना है जवाब। वैसे आपका सही है, आंखों में तिल मतलब यानी आंखों में तुम और दिल में हो तुम, हर जगह तुम ही तुम हो। नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉग बैठर सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच। एंड नंदनी माँ जी उठ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी आपका। और बता दूं कि इसका जवाब है दिल में हो तुम, और दो ही जवाब मेरे पास आए हुए हैं यानी सही सही, एक है यानी कि यहाँ पे नाम है सुनीता गोप जी और दूसरा नाहिद अंसारी जी, दोनों का सही है। और जितने भी दोस्त हैं बाकी सबका गलत गलत गलत गलत गलत गलत, सभी का गलत है, मैं सभी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। तो सुनीता गोप जी आपका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। और इसका सही जवाब था दिल में हो तुम। और आर्य सोनी जी लिखती हैं कि जितने भी दोस्तों ने हमारे जन्मदिन पर बधाई दिया है सभी को थैंक यू सो मच हमारी तरफ से।

0: और ये रहा अगला उल्टा पुल्टा गाना।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल। आया सावन, छाई बादल, खिले फूल और चहकी बुलबुल, सब आए हैं आने वाले, कब आओगे लेकिन तुम?
2: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड एज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है वो राजेश कुमार जी का, आरजे हिसोनी जी का और ज्योति खटवड़े जी का। और हमारे पास नाही जी हैं, सुनील जी हैं, जाकिर खान जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं और पूजा भास्कर जी हैं, मतलब और बहुत से दोस्त हैं, जैसे कि यानी किरंजन जी, नंदलाल जी, प्रेम सिंह साहू जी, शैलेश तिवारी जी, मतलब किन किन दोस्तों का नाम लूँ, बहुत से दोस्त हैं। और सभी का जवाब बिल्कुल सही है कि सावन आया बादल छाए। गाना सुनना चाहते हैं ये राजेश जी, लेकिन तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं, बिल्कुल तुम पे मरने लगे हैं हम, इश्क करने लगे हैं हम। हाँ जी, मरने लगे हैं हम बहुत ज्यादा।

0: ये रहा उल्टे पुल्टे गाने के बोल,
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: हद से ज्यादा प्यार किसी से तुम नहीं करना, इंतजार नहीं, एतबार नहीं, इकरार नहीं करना, जानिसार नहीं करना।
3: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

0: की गवां।
1: और घबराइए मत, यानी कि क्योंकि यानी कि कल तो था नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू, तो मैंने बहुत से दोस्तों को मतलब फोन भी नहीं मिला पाया, स्पेशल कॉल भी नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं स्पेशल कॉल जरूर करने वाला हूँ जो भी दोस्त आज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और बता दूं कि मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है बेस्ट आरजे सोनी जी का। ओ माय गॉड, बाजी मार रही है ये। और उनके बाद से है नाहिद अंसारी जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, और कमल शंकर इन पांडे जी हैं, दिगंबर जी हैं, अब्दुल जब्बार जी हैं, जाकिर खान जी हैं, ज्योति जी हैं, नंदलाल जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, ये प्रेम सिंह साहू जी हैं, और संध्या पटेल जी हैं। मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज है मेरे पास, लेकिन इनका जवाब है मतलब हद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करना, यानी क्यामत का गाना। और ये सुनना चाहती हैं कांटे नहीं करते दिन ये रात, सुनवा रहा हूँ। और फीडबैक भी मेरे पास आया हुआ है। नाहिद जी लिखते हैं कि सुनीता जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई थी। साथ ही साथ यहाँ पे ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने के एक खुले हो रहे हैं। और कमल शंकर पांडे जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं सर जी। और नाजिम जी लिखते हैं कि सुपर सुपर हिट पसंद गाने हो रहे हैं।
2: I love you.

0: और ये रहा अगला उल्टा पुल्टा गाना।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: घबराए हम तुम ना मिलो, आंख चुराए मिलो तो, हमें क्या हो गया है, तुम ही को बताएं दिल का राज, राज छुपाए तुम ही से, क्या हो गया है हमें।
3: दोस्तों आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

आई लव यू। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले यानी कि संध्या पटेल जी का आया हुआ है मेरे पास, और सही जवाब भी इनका मिलो ना तुम तो हम घबराए, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया हुआ है। और इनके बाद नाहिद जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, पूजा भास्कर जी और दिगंबर जी हैं, अकबर खान जी, ज्योति जी, जाकिर जी, राजेश जी, हमारी नंदनी माजी, प्रमोद जी, और यानी कि दिनेश जी, क्या नाम, रंजन यादव जी, राधा कृष्ण गोप जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज है मेरे पास। कुंता बिनी जी, प्रेम सिंह साहू जी, राजेश गौतम जी, मुस्कान बारले जी, बहुत से बहुत से बहुत से। तो फिलहाल अब उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

हमने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और मेरे पास इस बार सबसे पहले जवाब फिर आरजे सोनी जी का आया हुआ है। तो आरजे सोनी जी बधाई हो, आप बनी आज के विनर और आपको अभी कॉल किया जाएगा। उनके बाद मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से दोस्त शामिल हुए हैं। नाहिद जी हैं एक बार फिर से सेकंड नंबर पे, और यानी कि सुनील कुमार जी हैं, और कमल जी हैं यानी कि कमल शंकर पांडे जी, राजेश गौतम जी, ज्योति जी, प्रमोद कुमार जी, नंदलाल जी, और सुनीता गोगी, दिगंबर जी, जाकिर खान जी, राजेश कुमार जी, कुंता बनर्जी, अकबर खान जी, राधा कृष्ण गोगी और संजय पटेल जी इस बार बहुत पीछे हो गई हैं। तो फिलहाल कॉल लगाते हैं आरजे सोनी जी को।

0: आपका बहुत बहुत वेलकम है गीत मस्ती प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? हेलो, नमस्कार नमस्कार। और कैसी हैं आप? सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: आपको भी बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: आपको
0: थैंक यू सो मच। तो आज क्या करनी है स्पेशल? कुछ पार्टी वार्टी कर रही है कि नहीं? अकेले अकेले पार्टी कर रही है तो हम सबको भी इनवाइट कीजिए।
1: बिल्कुल आइए, स्वागत है आप सभी का। आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ तो बिल्कुल, हमें तो भैया यानी कि केक चाहिए आपका।
1: ठीक है, भेज दे रहे हैं अभी।
0: हाँ हाँ, धन्यवाद आपका। तो बताइए आज इसका जवाब क्या था?
1: अभी जो गाना था,
0: हाँ हाँ,
1: प्यार हमारा अमर रहेगा।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? बता दीजिए। हेलो,
1: हाँ हेलो,
0: हाँ जी।

0: अब गाना कौन सा सुनना चाहती हैं ये बता दीजिए।
1: हाँ कि हाँ एक गाना है ना महाराज सर महाराज फिल्म का है।
0: हाँ कि हाँ।
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ हाँ कि हाँ वही गाना सुनना है।
0: अच्छा मैं देख लेता हूँ महाराष्ट्र का है।
1: महाराष्ट्र
0: फिल्म का गाना है ओके ओके समझ गया ठीक है तो मैं आपके इस गाने को जरूर मैं सुनवा दिया एंजॉय कीजिए।
1: जी

0: है है। मुझे कॉल ना करें प्लीज, आप लोग ना कॉल करें प्लीज, और नो देखिए मैं ब्लॉक कर दूंगा प्लीज, आप कॉल ना करें। अजीब हाल है यार, समझ में नहीं आ रहा इनको। लगता है करना ही पड़ेगा, रुक जाओ यार। हो गया ब्लॉक, अब नहीं आएगा। चलिए भाई कोई बात नहीं, मुझे आपको मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे सवाल कर लेता हूँ मैं, तो सवाल करना भी क्या है कर, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। फिलहाल ये रहा सवाल,
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अमर प्यार है तेरा मेरा, मेरी नजर कर दूं जान, तू मांगे कर जीवन ये क्या, सर कदमों में रख दूं चाहे तू। दोस्तों आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और वैसे मेरे पास सबसे पहले जवाब आया था यानी पूजा भास्कर जी का, लेकिन इन्होंने अपना गाना नहीं भेजा है इसलिए इनका यानी कैंसिल होता है। और सेकंड जवाब है ज्योति जी का, इनका सबसे पहले ले लूंगा अब, और नाही जी का। दो जवाब मेरे पास सही सही आए हैं, बाकी दोस्तों का जवाब गलत गलत आए हैं। और मतलब इनका भी जवाब आया था सही बिल्कुल, यानी कि पूजा भास्कर जी का भी और प्रमोद जी का अभी जवाब आ गया, तो बहुत देर कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, तो मैं फिलहाल गाना प्ले करने वाला हूँ ज्योति खटवड़े जी का, और इनका जवाब था तेरा मेरा है प्यार अमर। ओके, तो बस, और इनका जो गाना है उड़ते बादल से पूछो मैं प्ले कर रहा हूँ।

0: और यहाँ से सुनवा रहा हूँ मैं अगला उल्टा पुल्टा सॉन्ग। ये तो शायद हो गया था ये
1: रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल। दिलों का मेला प्यार है, क्यों अकेला कोई फिर है, हुआ है क्या जाने, बेकरार है जिया क्यों, बार बार धड़के दिल।
2: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और मेरे पास कुछ फीडबैक है, जैसे कि नाजिम जी लिखते हैं वंडरफुल सॉन्ग चल रहा है सभी दोस्तों का, और कुंता जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, और ज्योति जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद लाजवाब, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत

0: और आज के सेकंड हुई है विनर ज्योति खटवड़े जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको कॉल लगाऊंगा मैं और उनके बाद मेरे पास मैसेज है हमारे निकित नाम है उनका, कमल शंकर पांडे जी, राजू क्या नाम है इनका, रजेश कुमार जी, सुनीता गोप जी, दिगंबर जी, अकबर खान जी, नाम इनका क्या है, नाम तो मुझे इनका नहीं पता चल रहा है, नाम मैं देख लेता हूँ, रविंदर कुमार जी। अच्छा रविंदर कुमार जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, तो आपका भी नाम मैंने ले लिया है। और संजय पटेल जी हैं, और कुंता बेनी जी हैं, राजेश गौतम जी हैं, और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी हैं, गजानन जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेजेस हैं, लेकिन विनर बन गए सेकंड विनर ज्योति खटवड़े जी, कौन लगाते हैं। ज्योति जी आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के शो का सेकंड विनर बनने के लिए।
1: थैंक यू।
0: और कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: गीत मस्त, मैं तो एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में, चक्कर चक्कर ग्रांटी के साथ एकदम बोले तो लय भारी।
1: हाँ।
0: और तो क्या कर रही हैं आज आजकल?
1: कुछ नहीं।
0: बताइए आप, यानी कि ना करते करते करते करते इन बाजी मार ली है ना, और ना ही जी हमें हमेशा यानी कि सेकंड आते हुए गायब हो गई।
1: गायब हो गई।
0: जी बिल्कुल, होता है ना।
1: हाँ।
0: तो बताइए आज पहले इसका जवाब बता दीजिए, क्या जवाब है?
1: हाँ, प्यार दिलों का मेला है।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: वो आर्यन मूवी का।
0: कौन सा?
1: रब ने मेरे।
0: आए हाय, क्या गाना है सच में, ये गाना है और एक वो गाना है, मेरे मन का मौसम बदलने लगा है, कमाल का लगता है कि नहीं? सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए।
1: और अमन जी,
0: जी जी,
1: वो मैं अब खेल सकती हूँ या नहीं?
0: नहीं, जिनका यानी तीन कंप्लीट जो यानी विनर बन जाते हैं वो आराम करेंगे। बिल्कुल, ओके, धन्यवाद।

0: हाँ ये बता सकता हूँ कि जो लोग इन विनर हो चुके हैं वो आंसर दे सकते हैं, लेकिन उनका गाना प्ले नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है। अगर खेलना है तो वो खेल सकते हैं। और ये रहा अगला अंतरा, मतलब सॉरी उल्टा पुल्टा गाना।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल। पागल मेरा दिल कितना भी है, तुमसे प्यार करता ये है तो, आते तुम सामने जब हो पर कुछ कहने से डरता है। दोस्तों आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

ओके, तो जो लोग यानी विनर बने हैं, मैं उनके लिए आज कुछ नया नियम ला देता हूँ कि वो मतलब यानी कि पार्टिसिपेट यानी कर सकते हैं। अगर उनका नंबर आता भी है तो वो अपना यानी कि कॉल यानी मतलब यानी किसी को कह सकते हैं कि आप इन्हें कॉल कीजिए, इनसे बातें कीजिए, इनका गाना प्ले कर दीजिए। वो एक ऑफर दे सकते हैं अगले यानी लिसनर के लिए, वो चाहे तो खेल सकते हैं। ओके,

जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं और सबसे पहला राधा कृष्णा गोप जी का, ओहो, और यानी कि कमलशंकर पांडे जी, सुनील कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, ज्योति जी, सुनीता गोप जी हैं, अकबर खान जी, नंदनी माँ जी हैं, रंजीत जी हैं, दिगंबर जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, रविंदर जी हैं, कुंता जी हैं, संजय पटेल जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं, सॉरी कॉल नहीं लगाते, गाना प्ले करते हैं इनका, राधा कृष्ण गोप जी का। और इनका जवाब था, मेरा दिल भी कितना पागल है। और इस गाने के बाद होगा सेकंड राउंड स्टार्ट। और एक बार फिर बता दूं कि जो यानी विनर हो चुके हैं वो खेल सकते हैं, लेकिन यानी किसी को भी अपना ऑफर दे सकते हैं। जिनका नाम लेंगे मैं उनके साथ उनको कॉल कर दूंगा।

0: करना है रिवर्स गाने की, तो सेकंड राउंड ये रहा।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: से कसम रहा के दिल ये, तुमसे है मोहब्बत ज्यादा से मोहब्बत।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

मैं बता दूं कि मेरे पास जो सबसे पहला जवाब आया हुआ है वो संजय पटेल जी का है। ये दिल कह रहा है कसम से ना, ना वो नहीं है कसम। अच्छा अगर अच्छा वो ओके ठीक है, और अगर तुम मिल जाए जमाना छोड़ देंगे वो गाना सुनना चाहते हैं कोई। ओके ओके मैं समझ गया आपका, और उनके वास्ते है यानी कि सुनील कुमार जी, इन्होंने अपना जवाब के साथ साथ गाना नहीं भेजा है तो इनका तो नहीं होता प्ले, कोई बात नहीं है। और पूजा भास्कर जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, और दिगंबर जी हैं, और जाकिर जी हैं, और ज्योति खटवड़े जी हैं, मोहब्बत से ज़्यादा, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। और राधा कृष्ण गोप जी हैं, और ये क्या नाम है इनका, सिकंदर जी हैं। अच्छा ओके सिकंदर जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है। तो संध्या पटेल जी गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ, और सही जवाब है आपका बिल्कुल।

0: और ये रहा उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: अरमान यही बस है, दम मेरा निकले, तेरे में कदमों जान पे निशाने दी रख, रेहाई न सोचा, रेहाई न देखा।
1: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाती रहो दिल से

0: जैसे मैं इस ऑडियो को दोबारा प्ले करता हूँ, ठीक है?
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: अरमान यही बस है, दम मेरा निकले, तेरे में कदमों जान पे निशाने दी रख, रहाई न सोचा, रहाई न देखा।
1: दोस्तों आप

ओके जी, मेरे पास दो ही जवाब सही आए हैं। एक तो आया हुआ है हमारे रविंदर यानी कुमार जी का, और दूसरा आरजे सोनी जी का, और बाकी दोस्तों का जवाब गलत गलत गलत गलत गलत है। तो भाई रविंदर जी, आपने उनसे थोड़ा सा पहले भेज दिया है, कोई बात नहीं, हम आपके गाने को जरूर प्ले करेंगे। रविंदर जी एंजॉय कीजिए। और गाना था देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दे निशाने पे, समझ गए ना।

0: जैसे ये रिवर्स गाने हैं, जा किसी लड़के से आंखें चार कर, यानी कि कर आंखें वगैरह, उल्टा उल्टा आपको जाना होगा। तो चलिए अगला सुनाते हैं रिवर्स गाना।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: होगा दिन आखिरी का जिंदगी दिन वो, तुम्हें दिन जिस दिल भूलेगा, इरादा वो कसम वो, वादा तेरा हुआ क्या।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: जरा बड़ा यानी कि कंफ्यूजन है, मैं फिर से प्ले करता हूँ इस ऑडियो को।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: होगा दिन आखरी का जिंदगी दिन वो, तुम्हें दिन जिस दिल भूलेगा, इरादा वो कसम वो, वादा तेरा हुआ क्या।
0: चलिए
1: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसी
0: कन्फर्म हो गया।

बिल्कुल, और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है जो सही जवाब है, क्योंकि इस गाने में बहुत ज्यादा यानी कि कंफ्यूजन थी। बहुत से दोस्तों ने लिखा था कि मैं जिस दिन भुला दूं, लेकिन मैं जिस दिन भुला दूं नहीं है यार, वो है क्या हुआ तेरा वादा, क्या वो कसम वो इरादा। ये बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहले भेजने वाली है यानी पूजा भास्कर जी हैं, ओके जी, और उनके पास से ज्योति खटवड़े जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं, और अकबर खान जी हैं, और अशोक देशमुख जी हैं, अजय कुश जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं मेरे पास। तो सीधे यहाँ पे इनका गाना प्ले करता हूँ।

0: और ये रहा वो रिवर्स गाने के बोल, अब मैं दो बार सुनाऊंगा आपको।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। अल्लाह सुभान, क्या सूरत अल्लाह, हाय गिरा तो मैं पिए बिन बोल। अल्लाह सुभान, क्या सूरत अल्लाह, हाय गिरा तो मैं पिए बिन भीगा भीगा मौसम डिका डिका डमडम।
2: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दी गाना।

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो राजेश कुमार जी का है, अजय कुछ जी का है और यहाँ पे सुनील कुमार जी है, साथ ही साथ एक साहब और भी है, क्या नाम है इनका, नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा है, ये सुजीत प्रसाद जी, अच्छा सुजीत प्रसाद जी इनका नंबर सेव करता हूँ मैं, तो इनका भी है और जाकिर खान जी है, अशोक देशमुख जी है, प्रमोद कुमार जी है और संजय पटेल जी है और पूजा भास्कर जी है, रवि महर्षि जी है, रविंदर कुमार जी है और कुंता बेन जी है, ज्योति जी है और भी बहुत से दोस्त हैं, इनका नाम तो मुझे पता नहीं, आनंद जी है, दिगंबर जी है, तो सभी का वेलकम करते हुए इनका गाना मैं प्ले करता हूँ, राजेश कुमार जी का ये, कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी मत पूछना, बहुत

0: ये रहा अगला रिवर्स गाना।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। लागी लू कोहिनूर, हीरा ने की चन्नी सोना, लागी लू हूर के जन्नत, तू हू सचमुच गोरी हो।
2: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल।
1: लागी लू कोहिनूर, हीरा ने की चन्नी सोना, लागी लू हूर के जन्नत, तू हू सचमुच गोरी हो।
2: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना।

0: जी संध्या पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है गीत मस्ती में रेडियो हॉट स्टार में। कैसी हैं आप? हेलो
1: भैया।
0: हाँ जी, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी मैं तो एकदम झक्कास बिंदास।
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, बस अच्छा। आपकी दुआएं हैं।
1: आपकी वॉइस ना बहुत प्यारी है।
0: ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा कहा।
1: नहीं, बहुत प्यारा आप सॉन्ग गाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच। तो और आप इन्हें कब से सुनती हैं और कहाँ से सुन रही हैं, बताइए मुझे।
1: मैं भोपाल से सुन रही हूँ, MP भोपाल।
0: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, भोपाल से सुन रही हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और यानी कब से सुनती हैं रेडियो हॉटस्टार?
1: मैं बहुत, काफी टाइम हो गया मेरे को सुनते।
0: अच्छा,
1: मेरे को बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आज पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है ना?
1: हाँ हाँ,
0: कोई बात नहीं। अच्छा बताइए,
1: ये मतलब डेली ऐसे करते हैं शाम को या फिर आज ही आ रहा है?
0: नहीं देखिए, ये जो गीत मस्ती है वो महीना में एक बार होता है, हर आखिरी यानी संडे को।
1: अच्छा।
0: और हर यानी कि सैटरडे को होता है अंतरा मस्ती, वो एक अलग चीज है। आप यानी कि पॉडकास्ट में सुन के समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हर सैटरडे को अंतरा मस्ती होता है, और वैसे डेली हर शाम में अलग अलग यानी के प्रोग्राम आते हैं, यानी कि कभी ओल्ड इज गोल्ड आता है, तो कभी 90s स्पेशल, तो कभी बॉलीवुड मस्ती, कभी कुछ कुछ ऐसे, हमेशा कुछ ना कुछ आते रहते हैं।
1: इसीलिए मेरे को आज ये सुनने को मिला।
0: अच्छा अच्छा,
1: बट मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब बताइए, इसका जवाब बता दीजिए पहले मुझे, जवाब
1: इसका जो अभी ये सॉन्ग पवन सिंह का है, सच हूँ तो जन्नत के हूर लागी।
0: हूर लागी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आप क्या सुनना चाहती हैं ये बता दीजिए।
1: मेरे को ना भी आप सॉन्ग सुना दीजिए, आप अपनी पसंद का सुना दीजिए आज। सब अपनी पसंद का सुनाते हैं आज, आप अपनी पसंद का सुनाइए।
0: अच्छा, सब अपनी पसंद, मुझे मेरे फेर में डाल दिया। अच्छा ठीक है। ये दिल आपका हुआ है ना?
1: ओके,
0: ये एक तो गाना है। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? तो मैं आपको ये गाना मैं सुना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये गाना आपको अच्छा लगे।
1: बहुत सुंदर गाना।
0: ओके, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: और यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ रिवर्स गाने का ये अगला सवाल।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: हो सांवरिया में मन तोहरा चाल का थी, निहारा तारा काही ऐसे टूक टूक, मारा तारा तू मुस्की मीठी मीठी देखा तानी।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल।
2: हो सांवरिया में मन तोहरा चाल का थी, निहारा तारा काही ऐसे टूक टूक, मारा तारा तू मुस्की मीठी मीठी देखा तानी।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और ज्योति जी आप बताइए, चूँकि आप यानी विनर बनी है तो आप यानी कि किन को अपना गाना, मतलब यानी कि किन का मैं गाना मैं यानी कि फोन करूँ और किन से मैं बातें करूँ और किन का गाना मैं प्ले करूँ, तो आप मुझे लिख कर जल्दी भेजिए। तब तक

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके जी, और ज्योति खडवर जी ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपने किसी को भी कॉल लगा सकते हैं, मतलब यानी जिसको भी। ओके, तो मैं किसी को भी कॉल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे अशोक देशमुख जी दिख रहे हैं, और वैसे तो अशोक देशमुख जी से मैं बातें करूंगा। अशोक देशमुख जी, आपको स्पेशल कॉल किया गया है। अशोक देशमुख जी, आपको स्पेशल कॉल किया गया है ज्योति जी के ओर से, क्योंकि ज्योति जी बनी है विनर इस गाने के लिए। अच्छा, और चूंकि जो ये विनर होता है तो वो अपना गाना वो यानी किसी को भी दे सकता है, और उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया है कि आप किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। मैंने कॉल लगाया है क्योंकि मैंने आपका गाना देखा था, हम बन जा रही की बात मत पूछो जी, गाना आपका बहुत अच्छा था, तो सोचा कि चलो आप ही से बात करते हैं, आप ही के गाने को मैं प्ले करूंगा, है कि नहीं? तो बताइए और कैसे हैं आप?
2: ठीक है, बस मजे में है, सुन रहे हैं शुरू से कार्यक्रम आपका और भेज रहे हैं।
1: तो मतलब यानी कि प्रोग्राम पसंद आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है?
2: हाँ पसंद है। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
1: कोई बात नहीं,
2: भोजपुरी गाने जो होते हैं,
1: भोजपुरी गाने
2: के बोल हमने
1: वो जरा गलती से बन गए हैं, हमसे ध्यान नहीं दिया है ना, तो ये गलती,
2: ये
1: वो गलती मन सुधर जाएगी, कोई बात नहीं है, हिंदी गाने रहेंगे है ना, कभी कभी हो जाता है गलती से मिस्टेक,
2: कोई लोग समझ जाते हैं
1: भोजपुरी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
2: बहुत कम लोग समझ जाते हैं।
1: हाँ बहुत कम लोग समझ जाते हैं, बात सही है आपकी बिल्कुल। तो चलिए गाने को मैं प्ले कर दूं।
2: हाँ जी हाँ, कर दीजिए,
1: एंजॉय कीजिए
2: हम बंजारों की बात।

0: और ये रहा अगला रिवर्स गाना।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: गया मिल कारवां खो रही हुए भटके, गया मिल जहां के, गया मिल जहां के, है लगता ये तो हो गए मिल जो तुम।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल,
2: आगे भटके गया के बोल। गया मिल कारवां खो रही हुए भटके, गया मिल जहां के, गया मिल जहां के, है लगता ये तो हो गए मिल जो तुम।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाती रहो दिल से।

और मेरे पास जवाब आ चुके हैं। सबसे पहले दिगंबर जी का बाजी मार दिया, दिगंबर जी और अशोक देशमुख जी, ज्योति जी है, एक साहब और भी है, क्या नाम है, यानी नाम है इनका शायद यानी परवर सिन्हा जी। तो भाई यानी कि परवर सिन्हा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है रेडियो हॉटस्टार में, और जवाब आपका भी सही है, लेकिन कौन सा गाना सुनना चाहते हैं वो भी लिखकर भेजना है, जरूरी है। राजेश कुमार जी हैं और सरफराज पटेल जी हैं, ओके जी, और ओके तो सुनाते हैं आपके पसंद का गाना दिगंबर जी, गुलों के रंग आपकी फेवरेट गाना जो मुझे भी फेवरेट बन गया है।

0: क्या गाना है वैसे? ये रहा रिवर्स गाने के बोल,
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: लिए तेरे मेरा, लिए मेरे तेरा, तड़पाया दिल किए टुकड़े दो के बना लक। लिए तेरे मुझे, लिए मेरे तुझे, बनाया ने रब।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स,
2: तड़पाया दिल लिए तेरे मेरा, लिए मेरे तेरा, तड़पाया दिल किए टुकड़े दो के बना लक। लिए तेरे मुझे, लिए मेरे तुझे, बनाया ने रब।
1: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

ओके जी, मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो एमडी फैज आलम जी का है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। और उनके पास है अशोक देशमुख जी हैं, अजय कुट जी हैं, ज्योति जी हैं, अकबर खान जी हैं, सरफराज जी हैं, संध्या जी हैं, और यानी कि परवर सिन्हा जी हैं, नंदनी माँ जी हैं, आफ्ताब जी हैं, बहुत से दोस्त हैं। सुनवाते हैं इनके गाने को।

0: और ये रहा रिवर्स गाने के बोल।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। लिए इस जाए रहना अकेला तो लिए किस बनाया नहीं रब तुझे। दोस्तों आपने सुन लिए किस जाए रहना अकेला तो लिए किस बनाया नहीं रब तुझे। ये इस जाए रहना अकेला तो लिए किस बनाया नहीं रब तुझे। दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाती रहो दिल से।
0: बहुत आसान गाना है।

तो मेरे पास आ गया है सबसे पहले मैसेज यानी कि सुनील कुमार जी का, और बिल्कुल इनका सही जवाब है यानी कि वो गाना है वो तुझे रब ने बनाया किस लिए। ओके जब से हम तेरे आशिक हैं।

ओके सुनील कुमार जी, गाना आपका मैं प्ले करूं, जब से हम तेरे आशिक बने सुनवा दिया। और जो आपका गाना अपने आपने जवाब भेजा था वो था ये तुझे रब ने बनाया किस लिए, तू अकेला ना राजा इसलिए। ओके, और इससे पहले वाला जो था वह गाना वो रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए, ऐसा गाना था।

0: और ये आ गया चौथा, मतलब क्या कहते हैं चौथा करें,
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। है दीवानी वही तो ये बदली ना बिल्कुल, पगली ये देखो, है कहानी है सच है सपना है अनजानी बड़ी लड़की। दोस्तों है दीवानी वही तो ये बदली ना बिल्कुल, पगली ये देखो, है कहानी है सच है सपना है अनजानी बड़ी लड़की। दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

और सच में जब से हम तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया। ओके जी, और मैं बता दूं कि मेरे पास ओ माय गॉड, सबसे पहला एक बार फिर से सुनील कुमार जी बाजी मार लिए, वाह क्या बात है, लगातार। अजय कुजी यानी कि सेकंड नंबर पे हो गए, थर्ड पे ज्योति जी हैं, और जाकिर जी हैं, सरफराज जी हैं, आनंद जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, परवल जी हैं, और अकबर खान जी हैं, और कुंता बेन जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं, बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल सीधे इनका जो गाना है, वो लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है, सच है, कहानी है, उन्होंने और गाना कौन सा था इनका, मैं जैसा देख लेता हूँ, यानी कि परदेसिया, ये सच है पिया। ओके, सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: और बता दूं कि ये रहा अगला रिवर्स गाना।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। हाल बुरा है हुआ जानम, तुझे जो देखा चाल जैसी हिरनी, ये नजरें तीखी तीखी, ये गाल गोरी गोरी, ये आंखें काली काली, ये।
2: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।

बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले पूजा भास्कर जी, ओ माय गॉड, ये काली काली आंखें, बिल्कुल सही जवाब है इनका। आनंद जी हैं, अजय कुछ जी हैं, जाकिर जी हैं, ज्योति जी हैं, प्रबल जी हैं, अकबर खान जी हैं, और भी दोस्त हैं, लेकिन इनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ और इनका जवाब बिल्कुल सही है। इन पूजा भास्कर जी, सुनवा दिया आपका पसंद का गाना, और ये गाना मुझे तो बेहद पसंद है।

0: और ये रहा अगला रिवर्स गाना।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: था करता प्यार में जिसे, थी लड़की ऐसी, एक था मरता लिए जिसके, लिए जिसके था जीता।
1: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

और बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं इस गाने के लिए सच में, यानी के सरफराज पटेल जी, आरजे सोनी जी, अजय को जी, ज्योति जी, पूजा भास्कर जी, आनंद जी और सुनील जी, गजानंद जी, जाकिर जी, अकबर खान जी, परवल जी, राजू सिंह जी, बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल सीधे गाना लगाते हैं इनका, सरफराज जी का।

हुस्न बना। और इस गाने के लिए भाई सरफराज जी मेरे दोस्त बनते हैं सॉन्ग विनर, आपको भी स्पेशल कॉल किया जाएगा। और मुझे आपकी वो पसंद बहुत याद आ रही है, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों है, क्या गाना है।

0: ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे मुझे सवाल करना है। ये रहा सवाल।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: लूंगा बना आईना देखूं तुम्हें, चाहूं जब लूंगा छुपा मैं दिल तुम्हें, तुम हो बसे में आंखों।
1: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसकी
2: सीखूं तुम्हें।
1: रिवर्स गाने के बोल।
2: लूंगा बना आईना देखूं तुम्हें, चाहूं जब लूंगा छुपा मैं दिल तुम्हें, तुम हो बसे में आंखों।
1: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसकी सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना।

आप लोग बड़े ही यानी के चलाक हो, आप लोग मुझ पर छोड़ देते हो, मैं किसको कॉल करूं, ठीक है? मेरे सामने जो आएगा रैंडमली मैं कॉल कर देता हूं। मेरे सामने दिख रहे हैं सबसे पहले यानी के प्रमोद कुमार जी, इन्हीं को कॉल लगाता हूं मैं।

0: भाई प्रमोद जी, स्पेशल कॉल किया गया है आपको। स्पेशल कॉल इसलिए किया गया है क्योंकि ये विनर बनी है आरजे सोनी जी, उन्होंने कहा है जिनको कॉल करना है कर लीजिए। मेरे सामने आप दिखे, मैंने आपको कॉल लगा दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: थैंक यू सर, और उनको भी, सोनी जी को भी सर
0: जी। और आज उनका जन्मदिन भी है।
1: हाँ, उनको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाई है सर।
0: धन्यवाद आपको, उनके तरफ से मैं कह रहा हूँ।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो बताइए आज यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे आप? वो तो मैंने झूठ बोला था,
1: वो तो नहीं याद कर। हाँ बिल्कुल सर,
0: हमें पता था कि आप यही सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप उस ओ दिन याद करो है ना
1: जी जी।
0: वो तो मैंने
1: झूठ बोला था,
0: झूठ बोला था। अच्छा जी, कोई बात नहीं, सुनवा दिया। आपके पसंद का गाना एंजॉय कीजिए।

तुमसे प्यार करूं, मैं और तुमसे प्यार करूं, इस धोखे में मत रहना।

0: अरे वो तो मैंने, अरे वो तो मैंने सच बोला था।
1: हाय हाय थैंक यू।
2: अरे मैंने भी तो सच बोला था।
3: ओके जी, अब स्पेशली कॉल लगाने वाला हूँ सबसे पहले सरफराज जी को, चूंकि स्पेशल विनर बने हुए हैं।
2: बोला था
3: भाई सरफराज जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
4: वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
3: और क्या बात है, आज तो बहुत ही प्यारा गाना लेके आए थे। हम बोले तो एकदम ये मजे में है, यानी कि एकदम झक्कास बिंदास लय भारी।
4: चलो अच्छी बात है, हम यही दुआ करते हैं आप हमेशा खुश रहे।
3: थैंक यू सो मच। तो इतना प्यारा गाना लाया है, कहाँ से लाते हैं ढूंढ ढूंढ के? आपका जो भी गाना आता है ना, मतलब मेरा तो दिल को छू जाता है। एक बोला था, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो गाना।
4: ये मुझे गाना अच्छा लगता है वही मैं भेजता हूँ, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कोई भी भेज।
3: जी,
4: मुझे अच्छा लगता है वही।
3: जी तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
4: और आज एक मिनट
3: बता दीजिए।
4: मूवी का नाम है यारा दिलदारा।
3: अच्छा गाना।
4: हाँ, तुम ही हो हमारी मंजिल।

0: माई लव,
1: तुम ही हो हमारी मंजिल माई लव। ओके ठीक है, मैं ये गाना जरूर सुनाऊंगा आपको। और सच में आपका गाना और अच्छा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।
0: शुक्रिया, ओके, थैंक यू।

भाई सरफराज जी एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे यार। और फीडबैक भी आया है मेरे पास, अनंत जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना उन्होंने चूज किया है। और ज्योति जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा भी गाना सभी सुनवाया। एंड यहाँ पे जुड़ चुके हैं स्वरूप कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है स्वरूप कुमार जी आपका। और कुंता जी लिखते हैं कि सुनील जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड नाजिम जी लिखते हैं सभी सॉन्ग ऑसम प्ले हुए हैं। एंड यानी पीकू राय जी जुड़े हुए हैं, वेलकम है पीकू राय जी आपका भी। कचना जी लिखते हैं कि दोस्त यानी कि प्रमोद कुमार जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं प्रमोद जी, लिखते हैं थैंक यू सो मच। और अगला कॉल लगाते हैं स्पेशल दोस्त आनंद जी को।

0: आनंद जी, आनंद ही आ गया आपसे बात करके मुझे।
1: अमन जी,
0: यस सर,
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और आपकी आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, वो जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से पेश करते हैं प्रोग्राम को, परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
0: ओ थैंक यू सो मच। और आप जैसे महानुभाव हमें सुन रहे हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। मतलब एक महान शख्सियत तो हमसे जुड़ा हुआ है और वो मुझे सुन रहा है। हमारे पास शब्द नहीं है। जी
1: हाँ, बोलिए अमन जी, और सब बताइए अपने बारे में कुछ। मैं एक टीचर हूँ
0: जी,
1: और यूट्यूब रिव्यूअर भी हूँ।
0: अच्छा,
1: रेडियो से मुझे बचपन से इंटरेस्ट रहा है।
0: अच्छा अच्छा,
1: रेडियो सुनना पसंद है, और इस कारण से ही अब मैं रेडियो का रिव्यू करता हूँ अपने चैनल एनालिटिकल आनंद के माध्यम से।
0: अच्छा,
1: और कल मुझे एक मार्क्यू का आईपॉड सॉरी बूम बॉक्स रिव्यू करना था, तो उसके लिए मैंने कनेक्ट किया था आपके रेडियो स्टेशन को।
0: अच्छा अच्छा,
1: और कल से ही मैं लगातार आपके रेडियो स्टेशन को सुन रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आया।
0: थैंक यू सो मच।
1: प्रोग्राम सारे और आपके आपके तरीके भी बहुत पसंद आए।
0: थैंक यू सो मच। और इसी बात में मैं तो कहूंगा कि मेरे रेडियो का भी रिव्यू कर दीजिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: है कि नहीं?
1: आपके आपके प्रोग्राम्स को मैं अपने रेडियो रिव्यू के दौरान जरूर मैं सुनाऊंगा अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे बेहद खुशी हो रही है, सच में। आई तो दिल गार्डन गार्डन, मेरा दिल बन गया है आज का, समझ लीजिए।
1: थैंक यू।
0: तो आज बताइए आनंद जी, आज आप दिन क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए मैंने प्यार किया का टाइटल सॉन्ग सुनवाए, जो कास्टिंग में कास्टिंग के वक्त जो प्ले किया जाता है ना, वो प्ले किया गया था फिल्म में, वो वाला।
0: वो तो मुझे अब मुझे फिल्म तो मैंने देखे हुए, एक जमाना हो गया, मुझे नहीं है यार, लेकिन मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया, ये सुना दूं?
1: नहीं, क्योंकि आप सुनाए दिल दीवाना।
0: अच्छा,
1: सुब्रमण्यम जी की आवाज।
0: अच्छा,
1: में
0: जी, दिल दीवाना
1: इस फिल्म का जो, हाँ हाँ, इस फिल्म का जो सुब्रमण्यम जी की आवाज में है ना, दिल दीवाना,
0: तो वो सुना के माने ना।
1: यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके, तो उसमें दो है, एक तो एसपी वाला सुब्रमण्यम की आवाज में है, और एक तो शायद
1: लता जी की आवाज में है। आप सुब्रमण्यम जी के, हाँ, आप सुब्रमण्यम जी की आवाज में जो है वो सुना है।
0: अब मुझे देखना पड़ेगा कि सुब्रमण्यम जी की आवाज में कौन सा है, अब तो निकालना पड़ेगा। रुक एक मिनट, जरा सा वेट कीजिए।
1: ओके, ना मिले तो फिर आप लता जी की भी आवाज में,
0: वो तो अभी अवेलेबल है हमारे पास। ओके, बाई एस बी बाला सुब्रमण्यम है ना, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। हमें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता है ना। हाँ, ये तो मुझे मिल गया है, मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल यानी मिल गया है, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी इसको प्ले ही कर देता हूँ।
1: चूंकि
0: क्या होता है ना कि कोई कोई गाने ऐसे हमारे पास है, हमारे ये डेटाबेस में है करीब बहुत ज्यादा गाने, यानी 10,000 से ज्यादा गाने हमारे पास, लेकिन अचानक से उसको ढूंढना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल,
1: थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग हो जाता है।
0: ओके,
1: कितने लगभग सॉन्ग्स होंगे आपके ये में, लाइब्रेरी में?
0: सर जी, बहुत गाने हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।
1: ओके ओके ओके ओके ओके।

और चलिए तो आपका वो जिस गाने की बात कर रहे थे आनंद जी, उस गाने को मैं थोड़ा सा सुनवाता हूँ कि ताकि मैं अपने श्रोताओं का मतलब जो कहते हैं वो मैं करता जरूर हूँ। तो सुनवा दे थोड़ा सा, इस गाने को भी इंजॉय कर लीजिए।

0: अकबर खान जी, स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। कैसे हैं आप?
1: अच्छा हो जी।
0: तो यानी क्या कर रहे हैं
1: आप? खाना खा के फिर होया हूँ।
0: फिर से आ गए हैं, चलिए अच्छी बात है। तो बता दीजिए आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: आज किशोर दा का गाना है जी, पड़ोसन पिक्चर का।
0: वो कौन सा गाना है,
1: थोड़ा गुनगुना के बता?
0: बिल्कुल, नहीं की और पूछ।

0: और ना ही जी लिखते हैं कि आनंद जी की पसंद मुझे काफी खूबसूरत लगी, थैंक यू सो मच आनंद जी। पिकुराई लिखते हैं कि ये पगला है, समझाने से समझे ना, गाना अच्छा लगा है मुझे। नाजिम जी लिखते हैं कि ब्लॉक बस्टर्स को पेट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त अकबर जी और आनंद जी की पसंद तो दिल दीवारा बिन संजना के माने ना, बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गया। अगला कॉल भी लगाते हैं जाकिर जी को। जाकिर जी आपका बहुत बहुत वेलकम है, कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक।
0: तो फाइनली आपका नंबर आ ही गया, तो क्या सुनना पसंद करेंगे
1: जी? सुना जी, प्यार करते हैं तुम्हें इतना जी? तो आंखें भी क्या तो जहां मैंने समा इतना,
0: प्यार करते हैं हम,
1: होटल मूवी का।
0: हाँ तुम्हें इतना, यही ना?
1: हाँ सर जी,
0: वो तो निकालना पड़ेगा, जरा सा इंतजार कीजिए। वो ये मतलब यानी कि गाना बहुत अच्छा है ना?
1: हाँ, रात इस गाने के लिए हम रात भर इंतजार कर लेंगे।
0: और मतलब इसके बाद एक और गाना है, वो वाला गाना, ये क्या बोलते हैं, अरे वो उस फिल्म का है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो यानी कि किस्मत की लिखी कोई बात हो तुम, वो गाना, ओह माय गॉड। ये दो गाने हैं ना, यानी कि प्यार करते हैं तुम्हें इतना और किस्मत की लिखी कोई बात हो तुम, दोनों ही बहुत ही लाजवाब है।
1: आपको जो पसंद हो सुनो।
0: अभी तो फिलहाल मैंने इसी गाने को सुना दिया, हो सकता है कि अपनी मैं यानी नंदनी माँ को कॉल लगाने वाला हूँ, कहीं वो सुना दे।
1: जी सर, जी सर।

और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मैं फीडबैक तो शामिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। मैं सीधे कॉल लगाता हूँ और उनके बाद से मैं फीडबैक को शामिल करने की कोशिश करूंगा। पहले नंदनी माँ जी को कॉल लगाता हूँ मैं।

0: माँ जी बहुत बहुत आपको मेरा प्रणाम है।
1: प्यार करते हैं,
2: खुश रहिए बाबू, खुश रहिए।
0: और कैसी हैं आप?
2: कैसे हैं आप?
0: अरे हम तो जगदीश बिंदास बस एकदम मजे में हैं।
2: मजे में और बिंदास एकदम गारंटी के साथ।
0: हाँ हाँ
2: हाँ ठीक है, फिर ठीक है।
0: जी जी जी, और बताइए तो क्या कर रही हैं आप?
2: अभी खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ।
0: तो स्पेशली क्या बनाई है माँ जी?
2: भिंडी की सब्जी बनाई हूँ।
0: अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं तो सब सब्जी खाता हूँ, मुझे सब पसंद है।
2: दाल रोटी और भिंडी की सब्जी।
0: अच्छा अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है।
2: तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: हम सब मतलब आपकी, मेरी और आपके पापा जी की पसंद का।
0: हाँ,
2: किस्मत में लिखी कोई बात।
0: आए है, ये तो गाना मेरा दिल के करीब है। सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: और अगला कॉल लगा लेते हैं नहीं जी, स्पेशली कॉल किया गया क्योंकि आज आपका नंबर नहीं लग पाया था, लेकिन आपने प्रयास किया था अच्छा खासा। हमेशा दो नंबर पे आ रही थी, एक नंबर नहीं जा रही थी, कोई बात नहीं। स्पेशल कॉल जिंदाबाद।
1: आपने कॉल किया
0: जी जी, बताइए तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: एल्बम है ना वो सौ रंग मोहब्बत के, वैष्णवी।
0: सौ रंग मोहब्बत के, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है
1: जी।
0: सौ रंग मोहब्बत के, तुमसे तो कहीं अच्छी, मुझे पता नहीं कभी कभी गाने जबकि है हमारे पास। सौ रंग मोहब्बत के ये मुझको दिखाती है ना रूठती है मुझ। अच्छा सीने से लगा तो इसीलिए तो नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसके बोल है सीने से लगा लूँ तो इसलिए कभी कभी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, गाना प्ले करती, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

अगला कॉल भी लगा लेते हैं जल्दी से बिना देर के हुए, और वैसे इसका एक अगला लाइन भी है वो भी कमाल का है। फिलहाल कॉल लगाते हैं और जब तक वो कॉल उठाती हैं

वाह। कोई बात नहीं,

0: आरजे वंशिका जी, स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक ग्रांटी के साथ एकदम, मतलब बिल्कुल लय भारी बोले तो।
1: बिल्कुल होना ही चाहिए ऐसा।
0: और आपको स्पेशल कॉल किया गया है क्योंकि इस प्रोग्राम को यानी कि सक्सेस बनाने में आपका भी हाथ है, क्योंकि वो जो ऑडियो बनाती हैं, चाहे वो रिवर्स हो चाहे वो उल्टे पुल्टे हो, उसके लिए सब आप मेहनत करती हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब यानी बधाई के पात्र हैं, इसलिए आपको कॉल किया गया।
1: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: साया मूवी का सॉन्ग है। हाँ। ओ साथिया ओ बेलिया, उदिंदर राम जी की आवाज में।
0: बहुत ही प्यारा गाना है, ये गाना तो मुझे बहुत पसंद है। ओ साथिया ओ बेलिया, ये वाला एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: थैंक यू सो मच।

और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। और जब भी टाइम मिला सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, साथ साथ रेडियो मतलब रेडियो गाना भी है उसे भी सुनते रहिए। तो और मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। ओके, मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

0: क्या देश है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहाँ कहा थे, हम कहाँ ठहरा करने को कहा गया गया?
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा का

0: अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
1: बंद। लेकिन गोविंदा नहीं नहीं हवलदार नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहते हैं, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते का पिया जाते।
2: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
2: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ये चतुर नार अमचो।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: साइतू, ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के